0: ada filem Mela ya. Ruby dan juga Abi Jane. Ruby akan juga Abi Jane ya. Uji Rabah Nebanaya. Okay. Terima kasih semua dekat 30K dan taping. Terima kasih dekat Kebang Putra. Selamat berhujung minggu semua ya. Nur, assalamualaikum Kak Lee. Waalaikumsalam.
1: Mujhe kuch kehna.
0: Ada filem Bobby dah masuk. Bobby dah masuk ni.
2: Mujhe bhi kuch kehna.
0: Peletum, peletum.
1: Mujhe kuch kehna.
0: Bukan tiba semuanya malam ni.
2: मुझे भी कुछ कहना है
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: पहले तुम
1: पहले तुम
2: तुम
1: तुम
2: तुम
1: तुम
2: तुम
1: तुम तुम
2: देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप करके निकल गई थी उस तरह हमारी पहले तुम पहले तुम पहले तुम पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए
1: अच्छा मैं कहती हूँ

0: मत हो चुप रहो मैं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं पर अब मुश्किल चुप रहना है।
1: ओके okay. फिल्म बॉबी की तरफ वाले फिल्म मन Tina Tintana. Okay, Rohit, terima kasih. Wow, pusing-pusing lumut sambil lain Bobby.